0: साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को

0: उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँड 102.7 मेगाहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर हे आहे आकाशवाणीचं कोल्हापूर केंद्र। श्रोते हो, सकाळचे 6:05 झाली आहेत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर

0: स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रैशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रैशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब

0: थ्रू स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the...
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
4: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
6: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब डेढ़ दशक से डुसू के

0: चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डुसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बँड 102.7 मेगाहर्ट्स आणि न्यूज ऑन AIR ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राचं वैविध्यपूर्ण प्रसारण। श्रोतेहो सकाळचे 8:15 वाजलेत।
3: ऐकूया खवय्यांसाठीचा चटकदार कार्यक्रम रुचिरा मसाले खवय्येगिरी। रुचिरा मसाले खवय्येगिरी या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत रुचिरा मसाले बाजारगेट कोल्हापूर।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आज इस सफर में आपकी साथी अनुराधा उपाध्याय। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप गीत कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत आज इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं कमेंट्स के जरिए, और उन्हें भी पढ़ते हैं, साथ ही गीतों का सफर भी शुरू करते हैं। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने आज की इबारत या टेक्स्ट नहीं पढ़ी है, हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इबारत यानी कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का नीला था और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अचानक उसकी नजर ठहरी एक लड़की पर जो शाम के उन रंगों को निहार रही थी। उसने कुछ सोचा और आखिरकार पूछा, इतनी देर से आप यहां अकेली क्यों हैं? वो मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो शरारत से बोला, अच्छा, और अगर मैं नहीं आता? जवाब मिला तो शायद ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। उसे देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की जाने कैसी है दीवानी। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। सामने दूर तक फैली हंसी वादियां और खिला हुआ आसमान जैसे उन्हें किसी अनजान सफर के लिए बुला रहे थे। उसने अचानक कहा, चलो कहीं दूर निकल चलते हैं। कहां? जहां कोई हमें पहचानता ना हो, जहां बस बातें हों, रास्ते हों और एक खुला आसमान। पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुछ दूर जाकर दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर रुक गए। नीचे घाटी में शाम उतर रही थी। वो चुपचाप आसमान को देखने लगी। उसने पूछा, भरोसा है मुझ पर? जवाब आया, दिल का ऐतबार क्या कीजिए। उस पल कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन शायद दोनों समझ गए थे। उसने पूछा, अगर कभी हमारी कहानी लिखी जाए तो कहां से शुरू होगी? जवाब आया, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। दूर आसमान में बादल चांद के सामने से गुजर रहे थे। उस रात जब वे वापस लौटे तो दोनों के पास कोई बड़ा वादा नहीं था, बस एक एहसास था कि जिंदगी की भीड़ में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ एक साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है, और शायद यही मोहब्बत है, जहां कहानी किसी तारीख से नहीं किसी नाम से शुरू होती है। तो ये थी आज की इबारत जो कि फेसबुक पोस्ट पर भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आपके संदेशों का इंतजार मुझे रहेगा।

लव स्टोरी फिल्म से गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी ने से लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। और आपके संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों के सफर के साथ शाम की सुहानी बातें होंगी और कुछ शामें दिल में उतर जाती है। विविध भारती जब शाम को नए पुराने गीत सुनाता है तो वे शामें अद्भुत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, न वादा हुआ न इजहार की।

बात बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजानी व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के भारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाहा हो तो सफर कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर मेरे यानी अनुराधा के संग, और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतजार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं तो? धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है, और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए, और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतजार कर रही हूं मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कभी सोमवार ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल जाना है क्योंकि दो दिन की छुट्टी शनिवार रविवार के बाद जब सोमवार आता है तो शाम होते होते कैसा महसूस होता है रविवार के दिन, बताइए मुझे।

दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम। और ये गीत आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, से लिखा राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई, लेकिन नो टेंशन, विविध भारती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीत में सफर के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूं और आपके साथ ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती है कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आए कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे।

और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना शर्मीली फिल्म से, नीरज ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फर्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहें हमारे साथ। इस प्रोग्राम से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं, और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों

0: भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य

0: सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि कर्मी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
1: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
0: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायुसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक

0: ने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एलावेनिल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: दर्द सह सकते नहीं और बन रहे हम दर्द हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमती फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

मन्नाडी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मूलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
0: और तोड़ो?
1: नहीं नहीं, और न तोड़ो। क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमोदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ।

0: बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्य पुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर। तुमने कैसे जाना?
0: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासुदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
1: हाँ, संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेठी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्य पुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमद वन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छन वन में तो नहीं गई? अरे अरे, कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
0: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: आओ यही करें राजकुमारी।
3: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
4: कैसे जाना वसंतक?
3: अरे इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
4: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
3: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
4: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्त में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ, ऐसा ही करो।
3: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
4: अरे अरे अरे, मधुकरों को भया तो न करो वसंतक। हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
3: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
0: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
1: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य अवंतिका के आंखों में ये आंसू कैसे?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
3: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
4: पूछो वसंतक।
3: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
4: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो?

0: वसंतक, मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
0: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो, तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी, दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु। वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए? आर्य वसंतक कहाँ हैं?
0: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
1: अब देवी वासवदत्ता कहाँ हैं? वे तो कभी की परलोक सिधार।
0: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
1: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
2: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
3: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरे, मैं ही यहां से चली जाती हूं।
2: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चले। सचमुच जाऊं?
3: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें शांत बना दो।
4: आर्य की जय हो।
0: पद्मावती, बैठो। जल्दी आए वसंतक
1: जी।
0: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
0: नहीं पद्मावती, नहीं।
1: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
0: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
5: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
4: आई।
5: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
4: राजकुमारी कहाँ है?
5: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
6: मैं आर्य वसंतक को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्र का करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके सैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र गृह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है।

0: दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
1: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
0: तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें।
1: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
0: जी,
1: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
0: जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
1: क्या कहा, उज्जैनी?
0: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
1: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासुदत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासुदत्ता, वासुदत्ता।
0: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
1: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
0: हाँ।
1: नगर कांपिल्य था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम पिर बोल जाएंगे।
2: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
1: वासुदत्ता, वासुदत्ता,
2: ये तो आर्यपुत्र है, यहां कैसे?
1: प्रिय,
2: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी, वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
1: अवंती राजपुत्री,
2: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहां कोई नहीं, एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
1: शिष्य,
2: बोल रही हूं स्वामी, बोल रही हूं।
1: क्या तुम कुपित हो?
2: नहीं, दुखी हूं।
1: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
2: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
1: वासुदत्ता, वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय,
2: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहां देर से बैठी हूं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
1: प्रिय,
2: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को

0: ठीक कर दूं। अब चलो।
1: ठहरो, ठहरो, ठहरो वापस, ठहरो वासुदेव, ठहरो। अरे, ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
2: राजन, जाग गए आप?
1: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
2: क्या?
1: वासव दत्ता जीवित है?
3: हाँ, वासव दत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गए।
1: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
3: समझा समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
1: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
3: समझा राजन समझा, इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
1: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
3: राजन, व्यर्थ चिंतन छोड़ें, आइए चतुर्शाला चलें।
2: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राज दल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कोशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था

0: घोषवती, घोषवती का स्वर, यह तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहां पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता, वो कहां है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजय, जा निवेदन कर, ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाये आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे? मुझे देख क्या वे उदास

0: नहीं होंगी?
1: नहीं पद्मावती, नहीं। बैठो।
2: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
1: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ। आर्यपुत्र की जय हो।
0: आर्यपुत्र की जय हो।
1: आर्यवैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
3: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
1: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
3: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
1: आर्यवैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना, तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
0: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
1: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल वासवदत्ता बस वो ही नहीं है।
0: राजन संताप न करें।
3: स्वामी धैर्य धरे, महासैन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
1: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
0: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं, पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया, उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही, उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
4: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
0: ये देखिए पद्मावती जी।
4: अरे
1: देवी, क्या बात है?
4: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासवदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
4: हाँ आर्यपुत्र।
1: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
4: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
2: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
4: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
2: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
4: जी।
5: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
5: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
2: आर्यपुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती, वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्य वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
0: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासवदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासवदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
5: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य है, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सा दृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनिका हटा दो।

0: स्वामी की जय।
1: आर्य पुत्र की जय।
2: अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंध रायन ही है, और ये महासेन पुत्री वासवदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
0: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
3: आप रक्षित हैं महाअमात्य।

0: राजन सभी जानते थे।
1: ओ
0: महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासवदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
1: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासव दत्ता भी होंगी।
0: हां स्वामी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ, ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
6: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
6: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो, यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे

0: उससे हम लोग बाहर निकल गए।
1: आप किस शहर में थे?
0: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
1: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
0: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
1: जी,
0: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
1: अच्छा अच्छा,
0: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी माताजी हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
0: हाँ,
1: और दौलत को ठुकराया।
0: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है? ये लखनऊ की बात है। और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा
1: जी।
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझमें भी आई, और मुझमें डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था
1: बाबा।
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरे को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहां पता चलता। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है।
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया?
0: मटका सिखाया है, फिर उन्होंने तबला सिखाया
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा।
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और इस
1: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था,
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे
0: थे। संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे? डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह, क्या बात है।
0: ऐसे टीचर, अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, ये मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको,
0: लेकिन
1: करते हुए।
0: हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी, वहां से जो जर्नी शुरू हुई,

है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते 1960 में बॉम्बे पहुंच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ? रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: डैडी नाम,
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा,
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ,
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टी
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप
1: जी। डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूं।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
0: जी।
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुआ।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी।
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंद गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी।
1: और प्रैक्टिस भी

0: 13 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप,
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
1: 13.5 घंटे
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
1: ओहो,
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक 3 घंटे खाना खाओ 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं
1: बच्चों के साथ खेलें,
0: कभी हुआ ही नहीं। क्यों, यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
1: जी,
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने उनको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है,
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: चल में। दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी। जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ।
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: वो भी
1: मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है, बड़ा रिदम विदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आए, हाँ पीटर आजा। उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने, हाँ पीटर आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन,

0: ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया। उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ, तुम बजाओ तो। और मैं नहीं बजा सका उससे।
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए। फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए।
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के। तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए। और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूं ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ
0: शर्ट फटी होगी
1: जी, जी
0: ध्यान नहीं है
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात
1: हो। इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, गायगुरु जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है।
1: 12 बरस की उम्र में?
0: नहीं, 14 बरस हो गया।
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी,
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले चलो उठो, चलो चलते। कहा चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी।
1: गजब।
0: 2 मेरे लिए, 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं डैडी को लेके गया। बोले इसको, लड़के को आप बाबा जी क्या, रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे।
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे। और इतने, जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
0: बाबा जी बोलते, नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं।
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे, और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: मुझे कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरी में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे
1: हैं। गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो, बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे,
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणी।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता। आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र।
0: ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड चर्चा कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में 7 दिन

0: उन्होंने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा। हमने 7 दिन के बाद हमें वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप
0: 15-16 साल की उम्र,
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
1: जी,
0: तो हम सब बजा रहे थे। मैं सर थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो मुझे याद थी क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करते थे।
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करते थे, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ वो ऐसा नहीं होता,
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ,
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
1: वाह,
0: पीटर साहब और डोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं? ओहो,
0: ये 64 की बात
1: जी। अब
0: फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: पहला सोलो था
1: जी,
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
1: जी,
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की एंट्री हो गई।
0: Somebody's
1: जी
0: there.
1: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगल आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
1: जी।
0: हम लोग सब यही कहते थे यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई काम है,
0: करिश्माई काम। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
1: हाँ।
0: जब प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूं और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी,
1: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
0: और गानों के नोटेशन करने में
1: वो भी
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस

0: स्टूडियो में समाए?
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए यहाँ रहे 7 दिन। सात दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब।
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से।
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई।
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है,
1: बहुत लंबा,
0: 2.5-3 मिनट
1: सारे किए हुए
0: जी।
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
0: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
0: जैसे, इस तरह से,
1: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
0: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
1: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था
0: जी,
1: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है
0: जी, जी।
1: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो
0: जी।
1: मतलब तो उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
0: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
1: आज भी अगर 6-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने
0: जी, बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
1: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
0: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए,
1: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
0: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
1: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
0: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है,
1: हाँ,
0: वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आया गया।
1: ये सुनाइए,
0: सुनते
2: वफा की राह में

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आप
2: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी
2: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर
0: जी जी जी।
2: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है वायलेंस की डबिंग है वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई
0: जी
2: जी
0: जी। क्या बात है, वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
2: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
2: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
2: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे
0: जी।
2: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ, मैं घर गया
0: जी,
2: चाय पीने चाय पीते हैं चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है
0: आशियाना
2: आशियाना। मैं कहा चाचा ही यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए रूम में बैठ गए, नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है, देखा तो हुआ इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है, तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब,
2: क्योंकि मैं अब मेरे से काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा, तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ पर। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
2: है। नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
2: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा हूँ उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह,
2: आज भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
2: बड़े बड़े सिंगर बैठे
0: जी,
2: गुलाम अली साहब से आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के रफी साहब लता जी आशा जी सब उस कुर्सी बैठते, वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब, ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
2: तहजीब और इज्जत
0: जी,
2: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है,
2: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
2: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था तो जी जी, जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी मियां आपको

0: छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की।
1: जी जी
0: क्या उम्र होगी मेरी? 48 58 68 24 साल की उम्र।
1: जी जी
0: 23 24 के।
1: जी
0: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए।
1: जी
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
1: अरे बाप रे
0: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
1: हाँ।
0: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
1: हाँ।
0: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
1: तो ये 3 गुना मांगा
0: 750 रुपये।
1: जी
0: बोले ठीक है
1: 750 रुपये एक गाने
0: एक
1: की?
0: गाने का।
1: गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो वो जो बोलेगा वही करना।
1: वाह।
0: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
1: बाप रे 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम हाँ कितना नजदीक आ गए होंगे कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहां गई सीखने के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है।
1: जी
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए अबू के पास ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे प्रीति आगे वो इतना प्यार हो गया इनमें इतना वो मतलब वो अबू और प्रीति अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात है।
1: अरे
0: हाँ पता नहीं आई डोंट नो उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है उसको
0: नहीं पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है मैया मेरी बहती जाए ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह ये सुनते हैं उसके बाद
0: ये सुनिए उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी। ये गाना हमने सुना, एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का।
1: जी जी।
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया, हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी। ये शायद 1963-64 की बात होगी।
0: जी।
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया। मदन साहब मिल गए बाहर, उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके।
0: जी जी।
1: वो बाहर बैठे हुए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी आइए, बैठी। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज
1: माई फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ
1: यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था।
0: फेलिक्स की दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरिडे साहब ने वो पोलका सिखाया था।
0: जी।
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है, तो वो सुनते रहे।
0: जी।
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में, जब मैं ऐसे मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था।
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरे ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम।
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी, तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी।
1: सोनिक साहब। हाँ। इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा।
0: जी जी जी।
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई। जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी। रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम।
0: हाँ
1: हाँ, रवि साहब क्या बहुत काम किया, तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी।
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए। एक्चुअली खड़े हुए थे, तो कुर्सी पे बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है,
1: कुछ इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना।
1: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है, और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में है, उनको पसंद नहीं आ रहा है,
1: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन

0: किया था
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था,
1: लेकिन
0: फौजी शख्स,
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ
1: मैं उनका ही गाना दारा री रारी यही बजा रहा था, बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से,
1: अपनी तरफ से बज गया, मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले, मेरे तो पसीने छूट गए एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ, एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या या आई प्लेड दिस तारारी री री तिरी री तारारी तरर तारी री री द द द त त, ये बजाया मैंने।
0: हाँ वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
1: लाया तो हूँ।

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से युवराज जी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए।
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार। उजाले।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़े ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

साथी ऐसा भी था जो ऐसा लगता था मानो जीवन की हर राह अब बस उसी तक जाकर खत्म होती है। लेकिन वक्त का अपना एक अलग हिसाब है, वो कभी एक सा नहीं रहता। लोग मिलते हैं, रास्ते बदलते हैं, दुनिया अपने छुपे हुए रंग दिखाती है, और फिर वही शख्स जो कभी ज्यादा और फिर वही शख्स जो कभी सबसे ज्यादा अपना होता था धीरे धीरे दूर होने लगता है।

सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई साथ रहते हुए भी अजनबी हो जाए। जब यादें तो वही रहें, मगर रिश्ते का एहसास बदल जाए। फिर भी कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जरूर जाते हैं, लेकिन हमारी रूह के किसी कोने में हमेशा बसे रहते हैं।

वो यादें बनकर हमारे जीवन को महकाते रहते हैं, जैसे समय कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो। क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं,

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वहीं कुछ आंसुओं से भीगे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके, मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती। दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके, उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।

यादें भी कितनी अजीब होती है ना। वो इंसान भले ही पास ना हो, मगर उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल, उसके होने का एहसास दिल से कभी जाने ही नहीं देती। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है, जो ये विश्वास दिलाती है कि शायद किसी दिन फिर से मुलाकात होगी, वही मुस्कान लौटेगी और अधूरी रह गई बातें पूरी होंगी।

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से

0: मोरिया या चित्रपटातील गीत आपण ऐकलं. रचना होती संदीप खरे यांची आणि संगीत होतं मिथिलेश पाटणकर यांचं. आणि या गीताबरोबरच गीतबहार चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम इथे समाप्त होत आहे. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. यानंतर ठीक 6:20 संस्कृत समाचार. हे संस्कृत मधून दिलं जाणारं बातमीपत्र आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. आकाशवाणी संप्रति वार्ता हा श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा. आदौ मुख्याः वार्ताः. दिल्ल्यां पर्यावरण सम्मेलनस्य समापन सत्रम अलंकुर्वती राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रापोचत् यत् सद्यो जाताः प्राकृतिक आपदः सुदृढ़ जलवायु कार्याचरणाय अस्मान् प्रेरयन्ति. देशे युववर्गेभ्यः मादक द्रव्य मुक्तये राष्ट्रीय संकल्प समारोहः आयोज्यते. सऊदी अरबे हौसी आक्रमणैः युद्ध स्थितिः संजाता. अपि च क्रीडावार्तासु महिला क्रिकेट दलं बांग्लादेश दलं पराभूय एशियन गेम्स क्रीडायाः चरमे सोपाने प्रविष्टवत्. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सद्य एव जातैः बहुभिः प्राकृतिक आपद्भिः स्पष्टं जातम् यत् जलवायु परिवर्तनानां प्रभावान् न्यूनीकर्तुं सुदृढा जलवायु कार्ययोजना आवश्यकी वर्तते. नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले आयोजितस्य पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्य सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् वैश्विक वैज्ञानिक समुदायेन संचेतना प्रदत्ता अस्ति यत् जलवायु संबद्धं संकटम् अधुना अत्यन्तं गभीरं जातम्. सा समस्यायाः निवारणाय समाधानाय च स्थानीय प्रादेशिक वैश्विकेषु सर्वेषु स्तरेषु संबद्ध पक्षाणां मध्ये सक्रिय सहकार्यं सुदृढीकर्तुं बलं दत्तवती. युवशक्ति मादक द्रव्येभ्यः रक्षितुं सर्वकारः शत सप्ताहात्मकं महाभियानम् अनुकल्पयामास. युवा मंत्रालयेन सप्तषडोत्तरैकसहस्र स्थानेषु संकल्प समारोहस्य संचालनं विधीयते. मंत्रालयेन अभिहितं यत् एषः उपक्रमः एकसप्तत्युत्तर चतुःशत मण्डलीयेषु माय भारत कार्यालयेषु तथा समन्वित संस्थानां षण्णवत्युत्तर पञ्चशत स्थानेषु समायोज्यते. समारोहस्यास्य मुख्यं लक्ष्यं तावत् मादकद्रव्य मुक्त शपथ ग्रहणेन हस्ताक्षराभियानेन विषयाधारित पथ नाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्व संवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति. पंजाबस्य युववर्गं मादक व्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुनराम मेघवालः मादक द्रव्य मुक्त यात्रायाः तृतीय पूर्ति मण्डलम् उद्घाटितवान्. आसफवाला स्मारके असौ एकसप्तत्युत्तर नवदश शततम वर्षस्य हुतिंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्. अत्रांतरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितम् यदेषा यात्रा न हि राजनीति प्रेरिता अपितु लोकसंग्रहाय प्रवर्तिता अस्ति.
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहेंगे और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाए. हम कैसे बनाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे. हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे. इसके लिए ये यात्रा, कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषय.
0: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजत ध्वजं समुच्छ्राययन्तीम् इलावेनिल वालारिविन इत्येताम् राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्. सामाजिक अन्तर्जालीय पटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तम् यत् वालारिविन इत्यस्याः एतेन उन्नत प्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मान प्रतिष्ठा संवर्धिता. तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिक समुन्नत्यै मंगल कामनाः प्रकटीकृताः।

0: प्रसार भारतीच्या वेळेस ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआर ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 7 वाजता आपण ऐकू शकाल प्रादेशिक बातम्या.
1: तिन्ही कॉलेजला
2: काळजी करू नकोस.
1: फीस पाहिलीस का?
3: काय कसं आहात? काय झालं?
2: फीस अटेन्शन.
3: राहुलचा बँक अकाउंट आहे तर रस्ता क्लिअर. बँकेकडून गरजे एवढं स्टुडंट एज्युकेशन लोन इझिली मिळेल, ज्यात 4 लाखांपर्यंत नो कोलॅटरल. ती कुठे मिठाई?
4: आरबीआय सांगते
5: करा योग्य सुरुवात, बना फायनान्शियली स्मार्ट.
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत

0: पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी

0: अन्नपमा राय यांनी गायलेलं, संगीत रचना पंडित अनुपम राय यांचीच होती. श्रोते, आज आपण हिंदी कार्यक्रमात अमृता राय सिन्हा यांचं भजन ऐकलं. यांना साथ संगत अशी होती, तबला साथ होती लोकेश गंधर्व यांची, हार्मोनियमची साथ होती ओंकार अग्निहोत्री यांची, गिटारची साथ होती बाळकृष्ण कामत यांची, साईड रिदम विनोद चौहान, व्हायोलिन पंडित कैलाश पात्रा आणि सादरकर्ते राजेश शेजवडे. ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती. यानंतर ठीक 8:45 समाचार संध्या, 9 न्यूज ऍट 9 आणि 9:15 स्पॉटलाइट, हे तिन्ही कार्यक्रम आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया. भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी. वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारत

0: भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन, रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और में हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं।

0: ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज।
2: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
6: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण

0: माध्यम बनने वाला है।
1: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह उन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहाँ 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation is fighting.

0: श्रोतेहो, आताच आपण वेडी हे मराठी नभोनाट्य ऐकलं. मूळ लेखक होते देवदत्त रुकडीकर, मराठी अनुवाद राजेंद्र कुमार फुले, यात सहभागी कलावंत बापट श्रेयस अतकर, देशमुख प्रकाश देवा, जोशी अभय अंजिकर, मांजरेकर अनिल पालकर, करणिक संजय गायकवाड, चपराशी सतीश रेवे, मी साने अपर्णा लखमापुरे, स्नेहलता दीपाली दोडके, सुरेखा तृष्णा खर्डेनवीस. निर्मिती सहाय्य होतं वैदेही चौरे यांचं. दिग्दर्शक आणि सादरकर्ते होते प्रकाश आत्राम. ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती.
1: आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 10 वाजता अखिल भारतीय संगीताचा रविवासरीय कार्यक्रम आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत.
2: आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको V.R. नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नाद स्वरम वादन सुनवा रहे हैं. V.R. नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेथ मंगला के एक प्रतिभाशाली नाद स्वरम वादक हैं. आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं. बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ. आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई. नादस्वरम परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण के साथ V.R. नटराजू ने आगे चलकर कई प्रतिष्ठित गुरुओं से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया. V.R. नटराजू आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं. 25 वर्षों से अधिक समय से वे मंच पर सक्रिय हैं और नादस्वरम की परंपरा के एक समर्पित साधक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं. आपकी प्रस्तुतियां अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर हुई हैं. आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रसिद्ध नादस्वर

0: तबल विद्वानों के साथ संगत करने का भी गौरव प्राप्त किया है। संगीत के प्रति आपकी निष्ठा और योगदान को अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज की प्रस्तुति में आपके साथ विशेष तबल पर एस सुधाकर संगत कर रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्ट

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदि ताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंडी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वीआर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय यस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सानगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग देयर परफॉर्मेंस वी आर नटराजू एंड पार्टी नाउ प्रेजेंट्स

0: वीआर नटराजू और उनके साथ ही अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास सेट इन राग जन सम्मोधिनी एंड आदि ताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है।

0: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है। पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुण।